0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

हेलो एंड गुड आफ्टरनून, आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701। हमारे स्टूडियोज में ठीक एक मिनट हो गए हैं 1:00। स्वागत है आप सभी का जो आज रेडियो विस्वानी सुन रहे हैं, और जो लोग आज पहली बार हमें सुन रहे हैं आपका भी स्वागत है। इस वक्त अगर आप ड्राइव पर है तो ड्राइव सेफली। आज शनिवार है, बिल्कुल ही रिलैक्सिंग डे है, वीकेंड है, एवरीवन इज रिलैक्स्ड, सो जस्ट रिलैक्स। अरे शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो ब्रिज पानी आई एम।

अच्छा दोस्तों, अगर आप आज आपकी शादी की सालगिरह है, आपके जन्मदिन है, कुछ भी है खुशियां आपके पास, हमारी तरफ से आपको बहुत सारी सी बधाइयां। अगर आप रेडियो ब्रिजबानी से किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं कोई गीत या अपनी फरमाइश करना चाहते हैं, 3279-1701 हमारा स्टूडियो नंबर है, नहीं तो आप हमारे मोबाइल पर SMS कर सकते हैं आपके साथ सू। अभी से लेकर ठीक 3 बजे तक हमारा मस्ती भरा प्रोग्राम शनिवार मस्ती म्यूजिक पर सभी का स्वागत। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है दोस्तों? ना सोने की चमक, ना नोटों की गाड़ियां। असल दौलत है आपका शरीर का स्वास्थ्य, शांत मन और सच्चे लोग। और बाकी सब तो वक्त के साथ आता जाता रहता है, इसीलिए तो कोई खुशियां ही खुशियां की चाह में रोया है, तो कोई दुखों की पनाहों में रोया है। अजीब सिलसिला है ना जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया है, कोई भरोसा करके रोया है। हैप्पी वीकेंड एवरीवन।

शुरुआत करते हैं आज का मस्ती भरा प्रोग्राम का शनिवार मस्ती म्यूजिक का पहला गीत आप सभी के लिए जो आज रेडियो विस्वानी सुन रहे हैं। गीत को मैंने लिया है फिल्म हीना से।

इरादे पर खूबसूरत हिना के लिए फिल्म महीनों से लेवा गीत। आज का पहला गीत आप सभी के लिए शनिवार मस्ती म्यूजिक पर आपने सुना। तो अगला गीत जो है माधुरी दीक्षित ऋषि कपूर के फिल्म याराना से लेवा गीत है। फिल्म 1995 की फिल्म थी याराना रब्बी और रब्बी।

सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान। दोस्तों हमारे स्टूडियोज में 1:15 बज चुके हैं और चलते हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत से लोग फरमाइश अपना सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं जिल्मिया के ओर। जी हाँ, जिल्मिया में आज हमारा प्रोग्राम सुन रही है माला और विजय। तो चलते हैं आप के लिए आज का पहला फरमाइश सुनते हैं।

0: बहुत प्यारे से गीत हमेशा आप इसे सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में, लेकिन आज दो अलग आवाज में आपने सुना अलग बीच पर। और हमारे साथ शामिल है हमारा प्रोग्राम सुन रहे जिल मिया में विजय और माला।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के दर जा रही हो।
2: गेट रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: समय हुआ हमारे स्टूडियोज में 22 मिनट हो गए हैं 1:00। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी 1701। अगर आपने अभी ट्यून किया है, स्वागत है आप सभी का। साथ है हमारा आपका, ठीक 3 बजे तक हम चलते हैं मेलबर्न की ओर। दोस्तों डेडिकेशन आई है हमारे पास मेलबर्न से शीला सिंह की ओर से, और शीला इज डेडिकेटिंग द नेक्स्ट सॉन्ग टू हर ब्यूटीफुल सिस्टर हु इज लिसनिंग हमेशा, जैसे सुनती है शिकागो में आमला सिंह के लिए। तो आप दोनों के लिए अगला गीत।

पर्दे पर शमी कपूर के लिए इस गीत को आपने सुना रफी साहब की आवाज में, जिसकी डेडिकेशन हमारे पास आई है ऑल द वे फ्रॉम मेलबर्न से शीला सिंह की ओर से, और इन्होंने इस गीत में आज याद किया यानी कि डेडिकेट किया था इस गीत को फॉर हर ब्यूटीफुल सिस्टर लिविंग इन शिकागो आमला सिंह। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वाणी, आपकी अपनी पहचान। हम चलते हैं अगले गीत की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अगले गीत की फरमाइश है हमारे पास सिडनी से, और सिडनी से कॉल है हमारे पास रजिन और मालती प्रसाद की ओर से। आप दोनों के लिए अगला गीत।

0: एक और बहुत प्यारा सा गीत, इसकी फरमाइश आई थी हमारे पास, यानी हमारे साथ शामिल है, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं हमेशा की तरह, वहाँ ग्रीन एकर सिडनी में रजेन और मालती प्रसाद।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: और देखिए सड़क जो है ना दोस्तों, सड़क का हर मोड़ रास्ते का अंत नहीं होता, कई बार वही मोड़ नई दिशा और नया सफर देता है। उसी तरह जिंदगी में आने वाले बदलाव में से घबराना नहीं दोस्तों, कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि हर बदलाव अपने साथ एक नया अवसर हमेशा जरूर लेकर आता है। हम चलते हैं सैक्रामेंटो USA से, फरमाइश है हमारे पास कामनी, जी हाँ कामनी नारायण और विजयन की ओर से, आप दोनों के लिए अगला गीत।

है दोस्तों, अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। अगला गीत हमारे पास है लेस वेगस यूएसए से, जहां में सुन रहे हैं दिनेश सोलंकी, दक्षा सोलंकी, साथ में है ग्रैंड चिल्ड्रन आनव, जयडन और अनाया, उनके परिवार। आप सभी के लिए आपकी फरमाइश अगला गीत।

0: और हमारे साथ शामिल है, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं लेस वेगास एलआई में दक्ष सोलंकी, दिनेश सोलंकी, और साथ में है उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आनव, जयरन और अनाया। आप सुन रहे हैं रेडियो विजपानी।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
0: हम चलते हैं केड्रोन पार्क की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। केड्रोन पार्क में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं जोनी और सविता, और इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में पौने दो बज चुके हैं। शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो विजपानी आईएम है जिसे आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियो 17 मार्स रॉक्स ब्रिस्बेन से आपके साथ सु, और आज साथ है हमारा आपका 3 बजे तक जोनी और सविता, आप दोनों के लिए एक लेटेस्ट गीत।

0: और जरूरी इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे किरण पाक से जूनी और सविता। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701।
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: और इस वक्त हमारे स्टूडियोज में बस 5 मिनट रखे हैं 2 बजने में, और आज साथ ही हमारा आपका ठीक 3 बजे तक है शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो विस्वानी। आईएम चलते हैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड की ओर। दोस्तों फरमाइश है हमारे पास डेनी और प्रवीणा की ओर से, और साथ साथ में उनके बेटे श्यामल। और श्यामल न्यूजीलैंड से नहीं लेकिन लंदन में हमें सुन रहे हैं, और हमें बताया गया है कि श्यामल का फेवरेट सॉन्ग है। तो सुनते हैं श्यामल फ्रॉम लंदन, जो लंदन में हमें सुन रहे हैं, उनका फेवरेट सॉन्ग क्या है।
3: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

फुल सॉन्ग अभिजीत की आवाज में दोस्तों आपने सुना, और बहुत से लोगों का फेवरेट सॉन्ग है वो एक गीत जो है, बहुत से लोगों का फेवरेट सॉन्ग है। और हमारे पास अभी भी दो तीन मैसेजेस ऑलरेडी आए हैं एंड आई एम प्लेइंग देयर फेवरेट सॉन्ग। लेकिन आज एक फेवरेट था राइडर विजवानी पर, इसकी फरमाइश आई थी शामिल की ओर से, जो हमें लंदन में सुन रहे हैं, और साथ साथ में उनके पेरेंट्स डेनी एंड प्रवीणा फ्रॉम ऑकलैंड न्यूजीलैंड। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।

0: So if you tried to put a CD.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पिस्पानी दोस्तों, हम चलते हैं फॉरेस्ट लेक की ओर। फॉरेस्ट लेक से अगला गीत के लिए फरमाइश है हमारे पास मिस्टर एंड मिसेस अरशद राम की ओर से आप दोनों के लिए लेटेस्ट बीट्स पर।

0: लिसनर्स जरूर हमारे साथ शामिल हो गए थे, यानी हमारा प्रोग्राम सुन रहे फॉरेस्ट लेक में मिस एंड मिसेस सेतराम।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।

0: May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: चलते हैं, सफर करते हैं दोस्तों द गैप की ओर से, जहाँ आप में सुन रहे ध्रुव और अरुणा. और हाँ, उनकी फेवरेट सॉन्ग, उन्होंने कहा आई ऑलरेडी प्लेड इट, और कभी यादों में आओ तो कभी ख्वाबों में आओ. अरुणा हमेशा इस गीत की रिक्वेस्ट करती है. सॉरी अरुणा, आपका नाम मैंने भूल गई, क्योंकि आज स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास ऑल द वे फ्रॉम लंदन से. तो चलते हैं, अरुणा ध्रुव आप दोनों के लिए सुनते हैं अगला गीत. क्या है देखे,

0: हमारे साथ इस गीत में शामिल हो गए थे ध्रुव और अरुणा फ्रॉम द गैप.
1: साजन मेरे ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया.
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: चलते हैं कैलिफोर्निया यूएसए की ओर. दोस्तों फरमाइश है हमारे पास कैलिफोर्निया से मैक्स प्रसाद की ओर से. मैक्स थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी.

इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे मैक्स प्रसाद, जो हमें सुन रहे हैं कैलिफोर्निया यूएसए में. हम चलते हैं लॉस एंजलिस एलए, और वहां से हमारे पास फरमाइश है. फरमाइश करने वाले हैं विनय, प्रेमिला, साथ में है रोनेल, क्रिस्टीन और आया. आप सभी के लिए अगला गीत.

ब्यूटीफुल सॉन्ग. फिल्म का नाम है हम सब चोर है. अगर आपने 90s पर रेडियो ब्रिजवानी सुना तो उन दिनों में हिट्स ऑफ 90s का जो प्रोग्राम हुआ करता था उनमें मेरा सबसे टॉप यही गाना, सबसे पहले यही गीत मैं लेकर आती थी, सावली सलोनी. और आज हमारे साथ इस गीत में शामिल हो गए थे वहाँ लॉस एंजलिस LA से विनय प्रेमिला, साथ में रोनील राया और क्रिस्टीन. चलते हैं मेलबर्न की ओर.

0: साथ हमारा आपका ठीक 3 बजे तक है शनिवार मस्ती म्यूजिक। तो एल्फ्रेडो किरण, सुनते हैं आप दोनों के लिए आज मैंने क्या चुना।
1: यादों की सरगम यानी बीते लम्हों की मधुर आवाज।

इसके लिए हमारे पास मेलबर्न से कॉल आई थी दोस्तों, और वहां पर हमें सुन रहे हैं हमेशा की तरह एल्फ्रेड और किरण प्रसाद दोस्तों। इसी के साथ साथ ठीक 2:30 बज चुके हैं हमारे स्टूडियोज में, हम चलते हैं सैक्रामेंटो यूएसए। विजयन चलते हैं आपकी फर्म।

0: पर फरमाइश करने वाले थे यूपी वाला के कौन सैक्रामेंटो यूएसए से विजयन।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के दर जा रही हो।
2: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: हम चलते हैं जिल्मिया की ओर दोस्तों, जहां पर कुछ लोग एक जगह पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, यानी कि गेट टुगेदर हुए हैं, जहां पर है जोनी और सविता फ्रॉम कैडरन पार्क, और साथ साथ में है विजय और माला। माला अविजय के घर पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो चलते हैं, आप सभी ने फैमिली गीत की चॉइस किया है, तो देखें गीत आपको कैसी लगती है।

फिल्म का नाम भी था हम साथ साथ हैं, जिसकी फरमाइश करने वाले थे केडोन पार्क से जोनी और सविता, विजय और माला फ्रॉम जिल्मिया, जो लोग जो वहां पर हमें जिल्मिया में सभी लोग एक जगह पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। शिकागो की ओर चलते हैं, अमला सिंह की फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत।

स्किट को फरमाइश करने वाली थी अमला सिंह जो हमें सुन रही शिकागो में। हम चलते हैं दोस्तों हेरिटेज पार्क से। अगला फरमाइश है हमारे पास साधना की ओर से। साधना आपके लिए अगला गीत। फिल्म का नाम हमराज। साथ साथ हमारे स्टूडियोज में पौने तीन बज चुके हैं।

0: In the era of
1: और दोस्तों बहुत प्यारा संगीत हमेशा आप महेंद्र कपूर की आवाज में सुनते हैं, लेकिन आज एक अलग अंदाज में आपने सुना और हमारे साथ शामिल हो गए थे इस गीत में साधना फ्रॉम हेरिटेज पार्क। हमारा आपका साथ है ठीक 3 बजे तक।

बहुत प्यारा सा गीत दोस्तों, मेरे ख्याल से एक गीत ट्रिनिडाड या सूरीनाम में बना हुआ है। हमारे पास कुछ और ऐसे ऐसे गीत है जो कल का प्रोग्राम में, संडे प्रोग्राम में मैं लेकर आने वाली हूँ। इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में बस 3 मिनट रह गए हैं 3:07। हमारा आज आपका यहीं तक था, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोग हमारे साथ शामिल हो गए थे, थैंक यू सो मच। बहुत से फीडबैक भी है, आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक एवरीवन। और हमारी अगली मुलाकात है टुमारो। हैव अ नाइस वीकेंड एवरीवन। अगर आप जो भी कर रहे हैं, एंजॉय व्हाटएवर यू डू। और अगली मुलाकात है टुमारो संडे, यहाँ पर ब्रिस्बेन में संडे है 2:30 से। याद रखिएगा 2:30 से आपका हमारा साथ होगा शाम का सफर पर। नमस्ते, खुदा हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
1: दीवाना

Get ready Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेज, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट। आज का

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

सोकर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त ऐ दोस्त ऐ

सामने बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

नमस्कार, वेलकम बैक। आ गए हमारे वीकेंड्स और मैं उनको भी कहती हूँ भाई वेलकम बैक। देर आए दुरुस्त आए, जिंदगी में आए तो मतलब कभी कभी होता है ना कि कुछ हफ्ते बड़े आराम से कट जाते हैं, जैसे जिस हफ्ते छुट्टियां होती है ना बड़े आराम से वीक कट जाते हैं। हम कहते हैं अरे ये सैटरडे आ गया, फिर से वीकेंड आ गया। लेकिन बॉस किसी हफ्ते अगर एक भी छुट्टी ना मिले या बॉस बहुत मार कूच के काम कराने वाला हो, बहुत सारी मीटिंग्स लग गई हो, काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, तो वो वीक काटे नहीं करता। एक एक दिन ऐसा लगता है कि यार महीने बीत रहे हैं लेकिन दिन नहीं कट रहे, होता है ना ऐसा। हाँ, तो फाइनली हमारी जिंदगी में सैटरडे आ गया, यानी हमारे वीकेंड्स आ गए। तो अभी हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा वीक कैसा था, वीक जबरदस्त रहा हो या ना रहा हो, वीकेंड जरूर जबरदस्त होंगे। और इन्हीं वीकेंड्स पर आपका साथ निभाने के लिए आपकी सताक्षी एक बार फिर से हाजिर है सैटरडे डिलाइट के एक और खास और खूबसूरत सफर के साथ। तो चलिए अपने वीकेंड्स को खास और स्पेशल बनाते हैं कुछ गानों, कुछ मस्ती, कुछ बातों के साथ, और शुरुआत करते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, सुनते रहिए मुझे और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट।

सैटरडे यानी वीकेंड्स आने पे आप कुछ याद रखें ना याद रखें, ये याद रखिए कि आपको विटामिन के, विटामिन एच और एल जरूर लेना है। नहीं समझे, ये कौन से विटामिन्स आ गए ये सोच रहे हैं? अरे भाई, K for kisses, H for hugs and L for love. तो आपका जो भी पार्टनर है जिसके साथ ये टाइम आप इंजॉय करना चाहते हैं, जिसके साथ ये टाइम आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उससे ये वाले विटामिन्स लेना ना भूलिए, ताकि आपके आने वाले वीक में आपको एकदम पावर मिल सके, आप रिचार्ज हो सके। तो वीक को खास बनाने के लिए वीकेंड को खास बनाना बहुत जरूरी है। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिजवाणी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

सैटरडे आते ही जिंदगी बड़ी खूबसूरत लगती है भाई, मुझे तो लगती है। और मुझे इसलिए नहीं लगती कि मेरे वीकेंड्स स्टार्ट हो गए हैं, मुझे इसलिए लगती है क्योंकि आपके वीकेंड्स स्टार्ट हो गए हैं। मतलब आपके वीकेंड्स मतलब हमारी खुशियां, और हम आपसे जितनी बातें करें, जितना चाहें आपके साथ मस्ती करें, इंजॉय करें जिंदगी को, आप हमारे साथ रहते हैं और आपको कोई जल्दी नहीं रहती। तो आपके वीकेंड्स आते ही मेरा बढ़िया वाला टाइम शुरू हो जाता है। वेल, इस टाइम को आज सेलिब्रेट करें एक बार फिर से आपके साथ सैटरडे डिलाइट में। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, एंजॉय करते रहिए मेरे साथ सैटरडे डिलाइट।

सैटरडे डिलाइट आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ, सो इस बार वीकेंड पे क्या प्लान है बॉस? मतलब कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है? देखिए किसके साथ का जवाब मेरे पास है कि भाई उसके साथ जाइए जिससे दिल लगा हुआ है, जिससे मोहब्बत है, इश्क है, क्योंकि जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना जिससे आपको मोहब्बत है, इश्क है, तो इससे ज्यादा खूबसूरत दवा आपके किसी भी तरह के दर्द के लिए और कुछ हो ही नहीं सकती है। आपका स्पेशल पर्सन आपके हर दर्द को दूर कर देता है और आपको ये बताता है कि यार जिंदगी ना बड़ी ही खूबसूरत है, बड़ी ही हसी, आप सारी प्रॉब्लम्स जो है, सारा स्ट्रेस जो है वो बीते वीक का भूल जाते हैं। तो जरूर एक वक्त ऐसा निकालिए जो उस बंदे के साथ हो वीकेंड्स पे, जो आपकी जिंदगी में बहुत खास है, बहुत अहम है, और जिसके साथ आप कह सकें तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। तो जरूर कहिए उसको ये, और सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट ओनली ऑन रेडियो प्रस्वानी 1701 FM।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: सैटरडे का खूबसूरत साथ आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्बेन पर, और हम और आप अपने वीकेंड्स को आज एक बार फिर से खास बना रहे हैं, स्पेशल बना रहे हैं, और जिंदगी की खास बातें हम और आप एक बार फिर से बांट रहे और शेयर कर रहे हैं। आई रियली विश कि आप भी आज अपने वीकेंड्स पर बहुत ही स्पेशल फील कर रहे होंगे। क्यों ना करें बॉस, मतलब पूरे हफ्ते की थकान के बाद ये वीकेंड्स आते हैं। तो भैया जैसे भी आपका मन करता है आप इन्हें एंजॉय कीजिए। मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और गाने के साथ। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्बेन।

अच्छा सतयुग याद है आपको? हाँ, सतयुग में जो लेडीज होती थी उनको क्या कहते थे ये याद है? देवी कहते थे ना, सीता देवी है ना, मंदोदरी देवी, देवी कह के ही हर नाम के आगे देवी लगा दिया जाता था। अच्छा अब क्या हुआ है, अब कलयुग आ गया है। और कलयुग में लेडीज को, महिलाओं को कैसे बोलते हैं? आजकल जो देवी थी वो बन चुकी है बेबी। हाँ तो आजकल बोलते हैं ना बेबी धराओ, तो बस ये देवी से बेबी का जो कन्वर्जन है इसने बहुत कुछ बदला है देखा जाए तो। लेकिन मैं यही कहूंगी कि यार मुझे तो ये कभी समझ आया नहीं। हाँ लेकिन आप बताइए कि आप में से कितने लोग अपनी पार्टनर को बेबी कह के बुलाते हैं? डार्लिंग, बेबी, मतलब डार्लिंग तो ठीक है, बेबी कितने लोग कहते हैं मुझे बताइए। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रिजवानी, फटाफट से आंसर करिएगा और बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर चाहिए मुझे। सुनते रहिए मेरे साथ सैटरडे डिलाइट। फिलहाल आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रिजवानी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: साथ आप एंजॉय कर रहे हैं वीकेंड वाला साथ। जी हाँ, आपके वीकेंड्स को खास और स्पेशल हम बना रहे हैं, और ये साथ जो है ये आगे जारी रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं आपके वीकेंड्स आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके हर लम्हे को और भी खास बना दें इस वीकेंड। क्योंकि यार जो पूरे हफ्ते की मेहनत है ना, उसके बाद जो सुकून आप चाहते हैं, तो रेडियो प्रसवानी को सुकून का ख्याल है, और ये सुकून जो है ये आपको हमारे जो प्लेलिस्ट है, हमारे जो गाने हैं, वो भी जरूर देते होंगे। तो फिलहाल एक और ट्रैक के साथ आगे बढ़ रही हूँ, इसे भी सुनिए। अनस्टे ट्यून रेडियो प्रसवानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट।

बॉस, किसी से भी पंगा लो, अपनी एक्स से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, फिर चाहे वो एक्स गर्लफ्रेंड हो या फिर एक्स वाइफ हो। अब हमारे मोहल्ले में रवि भैया हैं, तो रवि भैया का हाल ही में डिवोर्स हुआ, उनका तलाक हुआ उनकी वाइफ के साथ में। और डिवोर्स के बाद भाभी ने भैया को कॉल किया। अब हम तो भाभी कहेंगे ना, भाई हो गया तो तलाक हो गया, हमारी जबान थोड़ी ना बदलेगी। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि भाभी ने भैया को फोन किया और भैया को बताया कि सुनो मैंने कार खरीद ली है। तो भैया ने बड़ी बेरुखी से कहा मैं क्या करूं, खरीद ली तो खरीद ली। भाभी ने बड़ी शांति बनाए रखी, उन्होंने बताया बस ज्यादा कुछ नहीं करना, रोड क्रॉस करते समय बस जरा ध्यान रखना, सफेद रंग की गाड़ी है मेरी। अब ये सुनना था कि बेचारे रवि भैया शहर छोड़ गए हैं, तब से हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए लेकिन अभी मिले नहीं हैं। तो हम ये कह रहे थे रवि भैया तो समझ गए मगर देर से समझे, आपको ये कह रहे हैं कि भाई एक्स से पंगे मत लीजिए और खासकर जब मामला लड़कियों का हो, एक्स गर्लफ्रेंड एक्स वाइफ, समझ रहे हैं ना। चलिए, आपकी सेहत बनी रहे, बरकरार रहे, हम आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी को सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में
4: सैटरडे का खास और खूबसूरत सफर आप आज एक बार फिर से सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। वीकेंड्स आपके हम बड़े ही खास और स्पेशल बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपके वीकेंड्स हमें ये बताते हैं कि वो कितने खास आपके लिए हैं। यार वीकेंड्स की कीमत ना सच में वही जान सकता है जिसने पूरे हफ्ते मर खप के काम किया होता है। ये कीमत वही जान सकता है जो इंतजार कर रहा है कि यार एक छुट्टी मिल जाए तो कितने और काम घर के कंप्लीट हो जाएंगे। वो भी जान सकता है बेचारा बच्चा जो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है और जिसे अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स भी पूरे करने हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में वीकेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये वीकेंड्स उनके लिए घूमने फिरने के लिए नहीं होते हैं, उनके लिए अपने और कामों को खत्म करने के लिए होते हैं। फिलहाल उन्हीं लोगों के नाम ये अगला ट्रैक प्ले कर रही हूं, उसे भी सुनिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट ओनली ऑन रेडियो प्रसवानी।

0: रेडियो प्रस्वानी पर सैटरडे डिलाइट आप एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ बॉलीवुड के कई बेहतरीन गाने भी। दोस्तों,
1: कई बार ऐसा होता है कि आप वीकेंड पर बिल्कुल रेडी हैं कि भैया इस बार तो लंच बाहर होगा, दोपहर का लंच हम बाहर करेंगे, या फिर भैया डिनर के लिए बाहर चलेंगे। बीवियां तो मतलब एकदम एक्साइटेड रहती है कि कभी तो मुझे लेके नहीं जाते। आप कहते हैं कि चलो भाई आज बाहर चलेंगे और आप बिल्कुल सज संवर के तैयार होकर रेडी हैं एक अच्छी सी डिनर डेट पे जाने के लिए, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है और चार मेहमान अंदर आ जाते हैं। अब आप शॉक्ड हैं, क्या करें, उनको भी डिनर पर लेकर चलें या फिर घर पे डिनर बनाएं? हम समझ सकते हैं। और ये वो सिचुएशन होती है जब ना तो आप घर की दहलीज के बाहर कदम रख सकते हैं और ना ही अंदर आ सकते हैं। वैसे ये सिचुएशन मैंने कई बार फेस की है, आपने कितनी बार की, आप में से किसी ने की है तो हमारे साथ शेयर कीजिए रेडियो प्रस्वानी के फेसबुक पेज पर। फिर क्या किया आपने और कैसे इसको फेस किया हमारे साथ शेयर कीजिए। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट और बने रहिए यूं ही मेरे साथ वीकेंड वाले सफर में।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.
1: वीकेंड वाला शो सैटरडे डिलाइट आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ दोस्तों, और सैटरडे डिलाइट में आज फिर से आपको कुछ बेहतरीन गानों और बातों के साथ आगे लेकर चल रही हूँ। अपने साथ को खूबसूरत और स्पेशल बना रही हूँ, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि मेरे खुद के लिए भी, क्योंकि जब चीजें आपके लिए स्पेशल हैं, खास हैं, तो वो हमारे लिए ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो चलिए अपने साथ को और भी बेहतरीन करते हैं इस अगले ट्रैक के साथ भी। Keep listening to Radio Braswani, सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट।

राजा और अमित हमारे मोहल्ले के सबसे खतरनाक बच्चे हैं। मतलब जब भी ये दोनों होते हैं कोई ना कोई कयामत तो लाते ही हैं। और बातें तो ऐसी कि आप हंस हंस के परेशान हो जाएं। अब एक दिन मैं बैठी हुई थी घर के गार्डन में, तो मैं देख रही थी कि राजा ने अमित से कहा कि सुन भाई, अगर अचानक तेरे सामने भगवान प्रकट हो जाए तो क्या करेगा। मैं भी एक्साइटेड हो गई और सोचने लगी कि इसको तो छोड़ो, मैं क्या करूंगी। लेकिन खैर, अमित ने जवाब दिया कि देख भाई, मैं सबसे पहले तो कन्फर्म करूंगा कि भगवान हमारे पास आए हैं या हम भगवान के पास गए। वैसे कितनी भी दोनों सरपैर की बातें करें, लेकिन बात तो अमित ने बिल्कुल सही कही। भाई अगर भगवान आ जाए तो एक बार तो सोचना पड़ेगा कि हमें भगवान के दर्शन हुए हैं कि भगवान हमारे दर्शन चाह रहे हैं। क्योंकि अगर भगवान ने हमारे दर्शन किए तब तो ठीक है, हम भगवान के पास पहुंच के उनके दर्शन कर रहे हैं तो मामला जरा मुश्किल हो सकता है। नहीं, अमित की बात पर मैं तब से सोच रही हूँ, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूं, बांटने में से आप क्या सोचते हैं अगर भगवान आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे, बताइए हमें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ, सुनते रहिए सैटरडे।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए। ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: सैटरडे डिलाइट, जी हाँ, यही साथ, यही सफर इस वक्त आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। कई बॉलीवुड के ऐसे गाने आपको सुनवा रही हूँ जो इस वक्त इश्क में डूबे उन लोगों के लिए भी हैं, जो यार बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं, वीकेंड तो उसके साथ ही बिताना है, जिसने पूरे हफ्ते मेरी छुट्टी होने का इंतजार किया है। हाँ, जानती हूँ बहुत सारे ताने पड़े हैं, लेकिन वो सारे ताने आप इन लम्हों में खो देंगे और आप वापस अगले इंसान को ये एहसास दिलाएंगे कि आपको उससे बहुत मोहब्बत है। और उसी मोहब्बत के नाम ये अगला ट्रैक भी है। स्टे ट्यून्ड रेडियो।

यूं तो वीकेंड्स खास हैं, बहुत सारे काम आपके होते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लें आप छुट्टी को भी छुट्टी की तरह एंजॉय कहाँ कर पाते हैं हम आज के वक्त में। कुछ वेबिनार्स हो जाते हैं किसी टॉपिक को लेके, कुछ लोग जो कुछ और करना चाहते हैं, कुछ सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो कई सारी चीजों में हम इतना एंगेज हो चुके हैं कि हम वीकेंड्स को भी ठीक से जी नहीं पा रहे हैं, और हम अपने जो दूसरे काम है उसमें कुछ इस तरह से उलझ जाते हैं कि हमारे वीकेंड्स कहीं खो जाते हैं और वापस से आ जाता है मंडे। अरे आज यार मंडे की बात नहीं करनी, आज तो सिर्फ सैटरडे है तो सैटरडे की ही बात करते हैं। और हम फिलहाल ये कोशिश कर रहे हैं कि आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, अगर आप इस वक्त सैटरडे डिलाइट सुन रहे हैं तो हम आपको सुकून दे सकें और आपको याद दिला सकें कि आपके वीकेंड्स चल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हुए एक और ट्रैक के साथ, स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रसवानी, सुनते रहिए मेरे साथ सैटरडे डिलाइट।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: दोस्तों, वीकेंड की सबसे बढ़िया और खास बात पता है क्या होती है? वीकेंड की सबसे बढ़िया और खास बात होती है कि यार, बहुत लोग तो हमारा इंतजार कर रहे हैं काम के लिए, ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो ये इंतजार कर रहा है कि आप जाके उससे मिलेंगे, आप उसके लिए वक्त निकालेंगे, आप उसके साथ बैठेंगे, और वो हैं आपके पेरेंट्स। हाँ जी, आपके पेरेंट्स जिनके लिए शायद रोज वक्त नहीं मिल पाता है, वो कैसे हैं, कैसी मेडिसिंस चल रही हैं, कैसे क्या है जिंदगी में, आप रोज नहीं पूछ पाते, भागदौड़ बहुत रहती है, लेकिन वीकेंड्स पे उन्हें इस बात का इंतजार रहता है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप उनके साथ बैठेंगे और वक्त गुजारेंगे। सो जरूर वो वक्त थोड़ा सा ही सही, मगर उनको जरूर दीजिए। आप कितने भी बिजी हों, लेकिन उनका अधिकार है उस वक्त पे, तो वो वक्त उनके लिए जरूर निकालिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ हंसी मजाक कीजिए, और उन्हें बताइए कि सिर्फ उन्हें नहीं, आपको भी वीकेंड्स का इंतजार था ताकि आप उनसे मिल सकें। और चलिए आगे बढ़ते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्बेन, सताक्षी को सुनते रहिए, और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट।

तो दोस्तों ये था सैटरडे डिलाइट पर सताक्षी के साथ आपका एक और साथ। जी हाँ, आज के साथ को हमने खास बनाया बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन और खास गानों के साथ। हमारे और आपके इन गानों का जो अंदाज है, जो हमारी आपकी पेशकश है, ये आगे भी हमारे हर वीकेंड जारी रहेगी, लेकिन अब आज के सफर से इजाजत लेने का, विदा लेने का वक्त है। तो चलिए अगले हफ्ते मिलने के वादे के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, लेकिन आपसे ये कहूंगी कि अपने वीकेंड्स को जीते रहिए, खास बनाते रहिए, स्पेशल बनाते रहिए और सेलिब्रेट करते रहिए। नमस्कार।

बदला मैं, न बदला वो, न बदला तू। अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कमबख्त, ये वक्त है बदला। पहले था कबूतर, अब है ट्विटर, पहले थी बुक, अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम, अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की झप्पी, अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोच कर पिछला और अगला

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त ऐ दोस्त ऐ दोस्त।

बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तों कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार आई एम सो वरीड, आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं,

0: पन्नो।
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: चलो जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट्स।
0: ओके तुम्हारी मैं जा। लगता रूम में रह गया।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: सुकू सुकू
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू आई आई

असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार। अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मूड तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नो हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Priya, next month mama ka birthday hai. Soch rahi ho, unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge. Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka. Acha? वो क्या? अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
2: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन AU.LotusFX.com ऐप आज ही विजिट करें.

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन। ओपन्स मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: सर, ऑन स्टेज 5 मिनट्स।
3: ओके, तुम आ रही हो? मैं जा रहा हूँ। लगता है रूम में रह गया।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: जीवन से भरी तेरी आंखें,

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it bin coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी

या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brizwani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो, जीना आसान हो।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। जय श्री राम। एक बार फिर से आज भक्ति सागर की भक्ति में प्रस्तुति में रेडियो ब्रजवाणी 1701 एम पर श्रोताओं आप हैं सताक्षी के साथ। जहां हम भक्त हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारी परेशानियों को, हमारी विपत्तियों को दूर कौन करेगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि भगवान श्री राम हमेशा हमारी समस्याओं को हल करते हैं और हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट ले आते हैं। तो चलिए आज अपनी परेशानियों का हल भी खोजते हैं, भगवान श्री राम को भी खोजते हैं और अपने चेहरे की उस मुस्कुराहट को वापस लाते हैं जो हमारी वजह से, हमारी सांसारिक परेशानियों की वजह से कहीं खो गई है। रेडियो ब्रजवाणी 1701 एम पर भक्ति सागर में सताक्षी है आपके साथ और ये सफर भक्ति की नाव पर सवार होकर एक बार फिर से चल पड़ा है। तो आइए भव सागर से पार लगाने के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस भक्ति गीत के साथ। हमारे साथ सुनते रहिए भक्ति सागर रेडियो ब्रजवाणी 1701 एम पर।

भक्ति सागर रेडियो प्रस्वानी पर भक्ति की यही प्रस्तुति इस वक्त आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। रामायण की एक बहुत ही सुंदर चौपाई है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। अर्थात इस चौपाई में भगवान श्री राम ने जीवन का एक बहुत ही अहम पाठ पढ़ाया है, हम सबको अपने कर्म का महत्व सिखाया है। रामायण की चौपाई कहती है कि हर किसी को अपने कार्यों के अनुसार ही परिणाम मिलता है, चाहे कार्य अच्छा हो या बुरा। जैसा कार्य आप करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा और वैसा ही फल आप चखेंगे। इसलिए हमेशा नियति चाहे जिस ओर भी मोड़े, कर्म हमेशा साफ और अच्छे रखिए, ताकि आपके कर्म जब आपके सामने आकर खड़े हो तो आपको खुशी हो, दुख नहीं। सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी, सताक्षी है आपके साथ भक्ति सागर में।

भक्ति की आनंदमय प्रस्तुति भक्ति सागर, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। भक्ति के इस खास और अनमोल सफर में आपका साथ दे रही है सताक्षी। आइए प्रभु को याद करते हैं सगले गीत के साथ। सुनते रहिए भक्ति सागर रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर।

माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, करका मन का डार दे, मन का फेर। रेडियो प्रस्वानी 107.01 AM पर भक्तजनों, सताक्षी एक बार फिर से करती है आपका अभिवादन। हमें लगता है कि अगर हम माला फेर लें तो फिर हमारे मन के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। माला तो पापी भी फेरता है लेकिन उसके पाप नष्ट नहीं होते। एक तरफ अगर आप माला फेरें और दूसरी तरफ पाप करें तो भगवान भी आपका साथ नहीं देते। माला फेरने से मन की चंचलता और अशांति दूर नहीं होती है, इसलिए अपने मन के विचारों पर जरा विचार करें। किस तरह की बातें आप लोगों के लिए सोचते हैं इस पर विचार करें, और विचार करें कि जो कर्म आप कर रहे हैं क्या वो सही हैं कि नहीं, क्योंकि जब मन शांत होगा तभी प्रभु से आपका मिलन होगा। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं भक्ति सागर।

भक्ति की भावनाओं में डूबा सफर भक्ति सागर। इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रह्मवाणी 1701 एम पर। आइए भक्ति की नाव में सवार होकर प्रभु के सागर में, प्रभु की भक्ति रूपी सागर में विलीन होने के लिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अभी अगला गीत। हमारे साथ सुनते रहिए भक्ति की आनंदमय प्रस्तुति रेडियो ब्रह्मवाणी 1701 एम पर।

कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो तत्सर कर्मणि। अर्थात कर्म करने से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है, क्योंकि मनुष्य का सिर्फ उसके कर्म पर ही अधिकार है। और ये मैं नहीं कह रही, ये स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। भगवान कहते हैं कि मनुष्य का एकमात्र अधिकार उसके कर्मों पर है, उसके फलों पर नहीं। इसलिए हे पार्थ, तुम कर्म के फल के लिए काम मत करो और ना ही कर्म करने से तुम्हारी आसक्ति हो। तुम सिर्फ अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर ये छोटी सी बात हम समझ जाएं, तो शायद हम कभी भी आलस्य नहीं करेंगे। हमारा अधिकार सिर्फ हमारे कर्मों पर है, उसके फलों पर नहीं। इसलिए कर्म करते रहिए और फल की इच्छा भगवान पर छोड़ दीजिए। वो अपने आप आपके कर्म के अनुसार आपको फल दे ही देंगे। सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी सताक्षी के साथ, आप सुन रहे हैं भक्ति सागर।

भक्ति की आनंदमय प्रस्तुति आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर। भक्ति सागर, भक्ति सागर वो सफर है जहां पर भक्ति में हम और आप मिलकर लीन हो जाते हैं, जहां पर भक्ति हम में और हम भक्ति में समा जाते हैं। तो आइए इस भक्ति को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे पापों को नष्ट करें। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी, आपके साथ सताक्षी है।

एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, जब आप ध्यान में होते हैं तो क्या तब भी आप मेरा स्मरण करते हैं? क्या तब भी आपको मेरी याद आती है? क्योंकि कब आपका ध्यान टूटे इस इंतजार में मैं तो आपके सामने ही बैठी रहती हूँ। क्या आप भी मुझे याद करते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और पार्वती की ओर देखकर बोले कि हे पार्वती, तुम तो मेरी शक्ति हो, और क्या शिव कभी शक्ति से दूर हो सकता है? क्या अपने आप को भूलना आसान होता है? तुम मेरे ध्यान में भी मेरा ध्यान बनकर मेरे साथ होती हो, और जब मैं ध्यान से उठता हूँ तो तुम मेरे सामने होती हो। बताओ भला मैं तुमको कैसे भूलूं? शिव और शक्ति एक ही तो हैं। अगर वो अलग होंगे तब तो मैं तुम्हें भूलूंगा ना। हाँ, और इसीलिए तो भगवान शिव को अर्ध नारीश्वर कहते हैं, और इसीलिए माँ पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी कहलाती हैं, यानी कि उनका आधा अंग। भगवान शिव और शक्ति के नाम है ये अगला गीत। सुनिए और हमारे साथ सुनते रहिए। रेडियो प्रस्वानी, आप सुन रहे हैं भक्ति सागर।

तो भक्तजनों, ये थी आज भक्ति की हमारी एक और प्रस्तुति आपके लिए। कहते हैं जब भक्त भगवान से मिलने की ठान ले तो भगवान भी सारी मोहमाया छोड़कर अपने भक्त से मिलने चले आते हैं, इस आशा के साथ कि भगवान भी हमसे मिलने की चाहत अपने मन में जगा चुके होंगे। आज के सफर से, आज के इस भक्ति सागर से अब ले रही हूँ विदा, लेकिन इतना वादा जरूर है कि प्रभु की भक्ति में साथ साथ चलने के लिए, उनकी ओर साथ साथ कदम बढ़ाने के लिए हम सब बहुत ही जल्द एक बार फिर से साथ होंगे। तो बस भक्ति में डूबे रहिए, नाम जप करते रहिए, उसे पुकारते रहिए और उसमें लीन रहिए। प्रभु आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करें, इसी मंगल कामना के साथ राधे राधे।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है.

सिर तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी खातिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है आध्यात्मिक धार्मिक सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 5 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेदवाणी।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host Amita and Jatish. सुबह का सफर, आपके हम सफर जतीश और अमिता।
1: है रेडियो 1701 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।
2: जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडियो बिजवानी पर। मैं जतीश पूरन आपका साथ हो गया हूँ रेडियो बिजवानी, और उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ है इस समय। जी हाँ दोस्तों, रेडियो बिजवानी 1701 से आप सुन रहे हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों कि हमारा जो इस्लामिक प्रोग्राम आज नहीं चल पाया, यहाँ पर कुछ हमारे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के कारण ऐसे हुआ था दोस्तों। आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं जानता हूँ बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन वन ऑफ दोज थिंग्स आई सपोज। माफी चाहता हूँ दोस्तों। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक ही घंटा का प्रोग्राम है, फिर इसके बाद आप फिरोज भाई के साथ हो जाएंगे, फिर रोय सिंह और सू के साथ, फिर रात को यानी 5 बजे से आप शशि जोकन के साथ, फिर उसके बाद से साक्षी के साथ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा यहाँ ब्रिस्बेन का मौसम क्या कह रहा है दोस्तों। आज 20% चांस ऑफ रेन है और 24 डिग्री रहेगा। कल के लिए 14 रहेगा मिनिमम और मैक्सिमम 23 रहेगा। ट्यूसडे को 15 and 23, 60% चांस ऑफ रेन, और वेंसडे को 14 and 23 रहेगा। कहा गया है कि 10% चांस ऑफ रेन। थर्सडे को 13 and 22, 20% चांस ऑफ रेन। फ्राइडे को 14 and 23 हो जाएगा, 60% चांस ऑफ रेन। सैटरडे को 17 and 24, 70% चांस ऑफ रेन, और वीकेंड यानी संडे को 15 and 23, 40% चांस ऑफ रेन कहा गया है। तो ये रहा वेदर पैटर्न। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पहले गीत हो जाए दोस्तों, फिर हम वापस आते हैं बाद में। और किशोर कुमार लता जी का ये ड्यूट है, चलो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म आ गले लग जा का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और साथ में लता मंगेशकर जी, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरे साथ। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, मैं बतलाना चाहता हूँ जितने iOS लिसनर्स हैं जो ब्रिस्बानी ऐप अभी आप नहीं सुन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये फिर से बन रहा है और iOS में बहुत चेंजेस हुए हैं और हमें भी फिर चेंजेस करना पड़ता है। तो जो एंड्रॉयड है आप सुन सकते हो, या किसी और से जैसे सिंपल रेडियो हो, किसी और ऐप से आप जाकर सुन सकते हो, लेकिन जो हमारा खुद का ऐप है इसमें अभी हम कुछ परिवर्तन ला रहे हैं। जी हाँ, पैसा लग रहा है इसमें, क्या करेंगे। जब देखो iOS चेंज कर देता है, कुछ ना कुछ चेंज करता ही रहता है दोस्तों, ताकि और पैसा बना सके शायद। खैर, अजीब दुनिया है दोस्तों। कहते हैं कि दी हैप्पीएस्ट, मैं हैप्पी हूँ, लेकिन कहते हैं कि द हैप्पीएस्ट पीपल आर नॉट दोज हु हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बट दोज हु मेक द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग दे हैव। सही बात है दोस्तों, है कि नहीं। और वी आर नॉट अ थ्रो अवे सोसाइटी, हम बना ना कर ऐट पैट कर किसी तरह से चला लेते हैं चीज़ को, है कि नहीं। इंडियंस का क्या बोलते हैं, कैसे चिपकाना आप जानते हैं। तो चलिए, जो रोज समझ गए, जो ना समझे वो भी समझदार है। लेकिन आगे बढ़ते हुए दोस्तों, अभी ये घंटा का प्रोग्राम है, जैसे मैंने कहा और आपसे कह दूं कि कल, हाँ कल अमिता जी आ गई हैं और कल हम दोनों प्रोग्राम लेकर आएंगे, ठीक है। ओ भाई, आफ्टर 3 वीक्स, क्या बात है। चलो, आपने तो मेरा साथ नहीं छोड़ा दोस्तों, आप तो साथ दे रहे थे। और खैर चलो, धन्यवाद आपको, आप सभी को। तो चलिए, अगला जो गीत है किशोर कुमार का, आर डी बर्मन के संगीत पर आप सुनेंगे।

और हाँ दोस्तों, तड़पाना अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, ओके। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में हर दिन एक नई किताब का नया पन्ना होता है, होता है कि नहीं, आप बताइए। कल की गलतियों को सीख बना, और जी हाँ, कल की जो गलतियों है उसको सीख बना लीजिए, और आज के मौकों को अपनी ताकत, ठीक है, क्योंकि वक्त नहीं, जी नहीं, वक्त रुकता नहीं, और लेकिन जो वक्त का सही इस्तेमाल करता है वो कभी पीछे नहीं रहता है। तो वक्त ऐसा चीज है दोस्तों, हमेशा याद रखें, वक्त क्या बात है, वक्त किसी के लिए रुकता भी नहीं है दोस्तों।

जी हाँ दोस्तों, जिए तो जिए कैसे बिना आपके। और देखते देखिए दोस्तों, जो वक्त या वक्त के बारे में बात कर रहे थे, किसी के लिए रुकता नहीं है दोस्तों, चलता ही रहता है। लेकिन लेकिन एक रुका हुआ घड़ी दो बार सही समय बतलाता है ना, है कि नहीं? लेकिन हम रुक नहीं सकते हैं दोस्तों, हमें साथ साथ में चलना है।

जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत प्यारा सा गीत कुमार सानू की आवाज़ में आपने सुना। बहुत कम आजकल के जो लिरिक्स होते हैं जो मीनिंगफुल होते हैं, है कि नहीं। चलो एक मैं एक डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि आप सोच सकते हैं कौन सा गीत है। ठीक है। रात को एक खूबसूरत कली जैसी महबूबा मेरे ख्वाबों में आई, ठीक है, मेरे ख्वाब में आई और इतनी करीब हो गई जैसे मेरे गले का हार बन गई हो। अच्छा, ऐसे बहुत गीत होंगे, आप सोच रहे होंगे कौन सा गीत है ना। चलिए, ये किशोर कुमार का गाया हुआ गाना है दोस्तों, रात कली एक ख्वाब में आई। ठीक है, तो यही इसका डिस्क्रिप्शन था दोस्तों, सुनते हैं गीत को।

नहीं नहीं दोस्त, ये जीत हार वाला हार नहीं है, एक कली यानी फूल आई और रात को ऐसा लगा कि मेरे गले में हार बन गई यानी माला, समझ गए आप? हाँ, गीत का यही यही मतलब है दोस्तों। एक अजनबी हसीना से हो गई

0: ताजू?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

जी हाँ दोस्तों, इस समय 33 मिनट हुए हैं 9 बजकर, और मैं आपको बतला दूं कि इसके बाद आप फिरोज भाई के साथ हो जाएंगे, अपने पूरे प्रोग्राम लेकर आएंगे जिसका आपका हमेशा इंतज़ार रहता है, मैं जानता हूँ दोस्तों। फिर उसके बाद में रोहित सिंह हैं, फिर आप सुशीला के साथ हो जाएंगे 5 बजे से, शशि झोकन के साथ आप कार्यक्रम सुनेंगे, फिर उसके बाद आप सताक्षी के साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो कार्यक्रम सुनते रहना दोस्तों, भरपूर कार्यक्रम है और आपको अच्छा लगेगा। अगला जो गीत है इसमें है आशा भोसले और किशोर कुमार, जब से मैंने तुमको देखा है मेरी जिंदगी बदल सी गई है। ऐसे क्यों हो जाता है दोस्तों, मेरे दिल में नया एहसास, खुशियाँ और मोहब्बत जाग गई है, जिधर देखूँ मैं उधर आपको ही देखूँ। ये तो मैं जोड़ दिया हूँ, खैर उम्मीद है गीत, उम्मीद है आज के गीत आपको पसंद आ रहे हैं। मेरे पास न्यूजीलैंड से मैसेज आया है कि गीत बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच।

तो दोस्तों उम्मीद है कि लव का स्पेलिंग आपने सीख लिया होगा, एल ओ वी यानी लव। ठीक है, बड़ा खतरनाक चीज है दोस्तों, अच्छा भी है बुरा भी है जैसे आप समझो। अगला जो गीत है दोस्तों, एक बड़ा फन प्लेफुल रोमांटिक गाना है और ये मैंने लिया है मूवी सागर से। इसको गाया आशा भोसले, साथ में है एसपी बाला सुब्रमण्यम और आरडी बर्मन के संगीत पर, और म्यूजिक नहीं लिखा है जावेद अख्तर ने। जी हाँ, गीत ओ मारिया।

हाँ दोस्तों, प्यार का कुछ लेसन मिला होगा इस गीत में आप सभी को। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, समय बहुत कम है, बस शायद दो या तीन गाना और आपके लिए। और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा जब गीत बजाता हूँ तो कुछ ना कुछ उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको देता हूँ। और अगला जो गीत है उसमें कह रहे हैं, मोहब्बत में ज़िंदगी की ऐसे मोड़ पर ले आई है। जी हाँ, मोहब्बत हमें ज़िंदगी की ऐसे मोड़ पर ले आई है जहाँ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। जी हाँ, दिल में खुशी भी है और बेचैनी भी है और एक अजीब सी उलझन भी है दोस्तों। तो कौन सा गीत है सुनते हैं। इस गीत को गाए किशोर कुमार आर डी बर्मन के संगीत पर।

जी हाँ दोस्तों, किशोर कुमार के साथ आपने आरडी बर्मन को सुना. आरडी बर्मन रियली वेस्टर्नाइज द म्यूजिक और उन्होंने वेस्टर्न टच काफी दिया था म्यूजिक पर और ग्रेट ग्रेट कंपोजर. चलिए अगला जो गीत है दोस्तों, इसमें भी शायद आपको उनका आवाज़ सुनने को मिलेगा किशोर कुमार के साथ में. और ये मूवी पुकार से मैं लिया हूँ और इस गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने. शायद आपको अच्छा लगे दोस्तों. फिल्म पुकार का गीत है और इसी गीत के साथ हम यहाँ से निकलेंगे दोस्तों. और आप सभी ने मुझे मेरा साथ दिया, बहुत अच्छा लगा. एक बार फिर बता दूँ कि इस कार्यक्रम के बाद में आप हो जाएंगे फिरोज भाई के साथ संगीत की झनकार, और फिर आप रोय सिंह के साथ रहेंगे, और उसके बाद सुशीला के साथ भूलना मत 5 बजे से शशि झोकन के साथ, और फिर उसके बाद आप शताक्षी के साथ हो जाएंगे. ठीक है, तो चलता हूँ दोस्तों. अपना ख्याल रखिए और मिलूँगा मैं कल सुबह. मेरे साथ है अमिता और प्रोग्राम सुनना ना भूले दोस्तों. ठीक है, हैव अ लवली लवली रेस्ट ऑफ द वीकेंड. अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, दूसरों का भी. ठीक है, नमस्कार.

0: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फिजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की झनका।
1: दिलों को झंकृत करें,
2: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
1: रेडियो 71 ब्रिस्बेन पर यह है संगीत की झनकार और मैं हूं आपके साथी फिरोज खान।

इंतजार करने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आपके साथी फिरोज खान। वादे के मुताबिक एक बार फिर आपका दिलचस्प कार्यक्रम संगीत की जानकार को लेकर स्टेशन 1701 ब्रिस्बेन पर। बट जस्ट बिफोर स्टार्ट द प्रोग्राम रिमाइंडर, ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग इट्स फर्स्ट गेम दिस आफ्टरनून एंड 1 PM एंड यू कैन वॉच इट ऑन SBS। दिस ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट वर्ल्ड कप गेम एट 1 PM, यू कैन वॉच इट ऑन SBS। फिलहाल मैं हूँ आपके साथ ही फिरोज खान। हर सप्ताह की तरह एक बार फिर आपका दिल चाह कार्यक्रम संगीत की जानकार को लेकर उपस्थित हैं रेडियो 1701 ब्रिस्बेन पर। हर सप्ताह की तरह चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुराने फिल्मों से निकाली हुई, यानी कि हिट्स ऑफ 50s, 60s और 70s और कभी कभी 40s से भी। आपको याद रहे, यादों के सफर में हम आपके